0: To 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Hindi.
2: एक यूथ जस्टिस वर्कर के रूप में आप हिरासत में लिए गए युवाओं की मदद करेंगे. यह एक सुरक्षित नौकरी है जिसमें वेतनीय प्रशिक्षण और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. अगर आप समर्थन देने वाली टीम के साथ एक फायदेमंद करियर की खोज में हैं, तो यूथ जस्टिस करियर सर्च करें. ऑथराइज्ड बाय द विक्टोरियन गवर्नमेंट, मेलबोर्न.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: क्या आप जानते हैं कि मेलबर्न में खसरा मतलब मीजल्स फिर से फैल रहा है और मामले बढ़ रहे हैं. यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और समुदाय में बहुत तेजी से फैल सकता है. अच्छी खबर यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज आपको और आपके परिवार को मजबूत सुरक्षा देती है. आप अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीका लगवा सकते हैं. मजबूत प्रतिरक्षा मतलब मजबूत समुदाय.
0: वेस्टर्न पब्लिक हेल्थ यूनिट, प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ.
5: एक प्रारंभ

0: प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: पेश है साइंस वर्क्स में नई और जीवंत प्रदर्शनी कलर सी द वर्ल्ड इन अ न्यू लाइट। यहाँ देखें चमकते खनिज, जिकल भ्रम और बच्चों के लिए रोमांचक हाथों से किए जाने वाले व्यवहारिक प्रयोग, साथ ही बड़ों के लिए भी भरपूर आनंद। रंगों को देखें, रोशनी के साथ खेलें और इन सब से आपको विस्मित करने वाली प्रदर्शनी अब साइंस वर्क्स में खुल चुकी है। टिकट बुक करें museumsvictoria.com.au।
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: यदि आपने हमारी पहले भी सदस्यता ली है तो आपका धन्यवाद। आपके सहयोग से ही यह कार्यक्रम चलता रहा। आपकी वजह से आपके समुदाय की आवाज ऑन एयर है। अब समय है अपनी सदस्यता को नवीनीकरण करने का। सिर्फ सुनिए ही नहीं, इसका हिस्सा भी बनिए। फिर से हमसे जुड़े सिर्फ $11 कंसेशन के लिए या $16 फुल। ttzz.com.au पर जाएं या हमें कॉल करें 9415-1928 पर। क्या आपको लगता है कि खसरा सिर्फ बच्चों की हल्की बीमारी है? गलत धारणा। क्या आपको लगता है कि अब वैक्सीन की जरूरत नहीं रही? यह भी गलत धारणा है। मेलबर्न में खसरा फिर से फैल रहा है और यह आपको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है। यह बहुत तेजी से फैलता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। सच्चाई यह है कि MMR वैक्सीन की दो डोज मजबूत सुरक्षा प्रदान करती हैं और यह भी सच है कि यह वैक्सीन सुरक्षित, प्रभावी और आसानी से उपलब्ध है। अपने GP, स्थानीय फार्मेसी या स्थानीय काउंसिल के माध्यम से टीकाकरण करवाइए।
1: Western Public Health Unit, proud sponsor of 3ZZZ.
0: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं। आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं। अपने करियर को संवारें। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।
1: प्राउड स्पॉन्सर ऑफ 3ZZZ 92.3 FM।
2: मेलबर्न म्यूजियम की नई भव्य प्रदर्शनी रोम एम्पायर पावर पीपल अब खुल चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में पहले कभी नहीं देखे गए 180 अद्भुत ऐतिहासिक अवशेषों के साथ जानिए ऐतिहासिक रोम की विलासिता, ग्लैडिएटर्स का रोमांच और आम रोम के लोगों का जीवन। मूर्ति और मोजेक से लेकर आभूषणों और रोजमर्रा की वस्तुओं तक प्राचीन रोम की संस्कृति और इतिहास को एक बिल्कुल नए अनुभव के साथ जानें। बुक करें रोम एम्पायर पावर पीपल museumsvictoria.com.au।
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: अगला कार्यक्रम हिंदी भाषा में प्रसारित होगा।

दादा भाई फाल्के अवार्ड पाने वाले पहले गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, जो हिंदी सिनेमा से सबसे ज्यादा समय तक जुड़े रहे और बेहद कामयाब और मशहूर रहे, खास करके अपनी गजलों के लिए। उन्होंने फिल्मों के जरिए भी और अपनी शायरी में भी गजलों को बहुत ऊंचा मकाम दिलाया। उन्होंने हिंदी फिल्मों को एक नया स्टाइल भी दिया, जो कहलाया रोमांटिक कॉमेडी ड्यूएट्स, जो 50s और 60s में बहुत चले थे। इन ड्यूएट्स के पीछे किस्सा ये है कि एक बार एक पार्टी में फिल्मी ड्यूएट्स की कम होती लोकप्रियता पे लोग बात कर रहे थे, तो मजरू साहब ने कहा कि ये तो गीतकार का दोष है, और ये वादा भी किया वे जल्दी ही एक दो गाना लिखेंगे। तब बर्मंदा बोले कि मेरे लिए क्यों नहीं लिखते आप, और बस बन गई उन दोनों की सुपरहिट जोड़ी, जिसने पेइंग गेस्ट, 9 तो 11, चलती का नाम गाड़ी, काला पानी जैसी कितने ही फिल्मों में रोमांटिक डुएट्स दिए।

मजरू सुल्तानपुरी का जन्म 1 अक्टूबर 1919 को हुआ था और उनका असली नाम था असरार उल हसन खान। उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई मदरसे में, जहां उन्हें अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा मिली। उनके पिता की ख्वाहिश थी कि वे डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने लखनऊ से यूनानी चिकित्सा में ग्रेजुएशन किया और हकीम बन गए। कॉलेज के दिनों में ही संगीत से ऐसा लगाव हुआ कि म्यूजिक कॉलेज में चुपचाप दाखिला भी ले लिया, मगर जब उनके वालिद को पता चला तो म्यूजिक कॉलेज छोड़ना पड़ा। पर अपनी प्रैक्टिस में उनका ज़्यादा ध्यान नहीं रहा तो वे सुल्तानपुर वापस लौटे। उसी दौरान उन्होंने शायरी शुरू की और सुल्तानपुर के एक मुशायरे में अपनी गज़ल पढ़ी तो लोगों को बहुत पसंद आई, और इसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दिलचस्पी शायरी में ज़्यादा है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने नौकरी छोड़कर शायरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया और जल्दी ही मुशायरों की जान बन गए। ऐसे ही एक मुशायरे में मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी ने उन्हें सुना और वह युवा मजरू से बेहद प्रभावित हुए और फिर उन्होंने मजरू सुल्तानपुरी को अपना शागिर्द बना लिया। इसके बाद उनकी शायरी दिन पर दिन निखरती चली गई। 1945 की एक बात है जब मजरू सुल्तानपुरी जिगर मुरादाबादी के साथ एक मुशायरे में शामिल होने के लिए मुंबई गए थे। तब वहां उन्हें सुनने के बाद उस समय के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक एस आर कारदार ने मजरू सुल्तानपुरी को अपनी अगली फिल्म शाहजहां में गीत लिखने का ऑफर दिया। ए आर कार उन्हें संगीतकार नौशाद के पास लेकर गए। नौशाद ने उन्हें धुन दे के उस पे बोल लिखने को कहा। मजरू साहब ने लिखा, जब उसने गेसु बिखराए बादल आया झूम के। यह बात सबको पसंद आई और इस तरह मजरू सुल्तानपुरी 500 रुपये की तनख्वाह पर कारदार फिल्म से जुड़ गए। शाहजहां फिल्म में 10 गाने थे, उसमें 8 मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। उनका ये गीत जब दिल ही टूट गया तो केएल सहगल को इतना पसंद था कि उन्होंने कहा था कि उनकी मौत पर उनकी अर्थी के साथ यही गाना बजाया जाए। शाहजहां फिल्म में 10 गाने थे, उसमें 8 मजरू सुल्तानपुरी ने लिखे थे। उनका ये गीत जब दिल ही टूट गया तो केएल सहगल को इतना पसंद था कि उन्होंने कहा था कि उनकी मौत पर उनकी अर्थी के साथ यही गाना बजाया जाए। मजरू सुल्तानपुरी प्रगतिशील लेखक संघ के सक्रिय सदस्य थे और उनकी इनकलाबी शायरी के चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जब वे जेल में थे तो उन्हीं दिनों उनकी बेटी का जन्म हुआ। उस समय उनके परिवार को काफी तंगी से गुजरना पड़ा था। माफी मांगने की शर्त पे वे रिहा हो सकते थे, पर उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। वे बहुत उसूल पसंद इंसान थे तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। ऐसे समय में उनकी मदद को राज कपूर सामने आए और उनके आत्मसम्मान को बरकरार रखते हुए उनकी मदद की। उन्होंने मजरू साहब को एक गीत लिखने को कहा और उसके लिए उन्हें करीब 1000 रुपये दिए, जो उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। ये गीत आगे जाकर राज कपूर जी ने अपनी फिल्म तीसरी कसम के लिए इस्तेमाल किया।

जेल से रिहा होने के बाद मजरू सुल्तानपुरी को गुरुदत्त की फिल्म आर पार मिली, जिसमें म्यूजिक था ओपी नैयर का। इस फिल्म की कामयाबी के बाद उन्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा था।

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन।
2: मजरू सुल्तानपुरी का फिल्मी सफर नौशाद के साथ शुरू हुआ था, जिससे उन्होंने सीखा था कि फिल्मी गानों को कैसे लिखना चाहिए।

ओपी नैयर, आर डी बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, खयाम, चित्रगुप्त, उषा खन्ना, रवि, मदन मोहन, राजेश रोशन के साथ साथ आनंद मिलिंद, जतिन ललित और ए आर रहमान तक सभी के लिए मजरू सुल्तानपुरी ने गीत लिखे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मजरू सुल्तानपुरी ने करीब 40 फिल्मों में काम किया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ मजरू सुल्तानपुरी जी ने करीब 40 फिल्मों में काम किया और उन्हें फिल्म दोस्ती के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला।